इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

Yes.

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.
2: अरे ये सब हटा रहे, सावन की घड़ा चल, अपना चला चल, अपना चला जल ले।
3: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता. सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,

0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: चुनार बीट्स विद आरजे दीवा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो के सफर में मैं हूं आपका साथी जॉक्सू। दोस्तों शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इज द नंबर। नौ सिफर चार आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मजेदार शो व्हाट्सएप स्टे हुक्ड धड़काते रहो।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रीजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप पे। जी हाँ, कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर ये बात करते हैं कश्मीर के एक इन्वेंटर की, जिन्होंने पेटेंट किया है अपना ट्राई हाइब्रिड थ्री व्हीलर स्कूटर। सोलर से चलने वाला ये ट्राई हाइब्रिड थ्री व्हीलर स्कूटर बैटरी के साथ आता है और साथ ही साथ छोटा सा जनसेट भी इसमें लगा हुआ है, जो सोलर की मदद से एनर्जी लेकर स्कूटर को ड्राइव करने में आसान बनाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। जी हाँ, शी सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, मिस्टर बिलाल है बंदे का नाम। बताया जाता है कि खासा फेम इस स्कूटर को मिल रही है और एवरीवेयर मिस्टर इन्वेंटर इज वांटेड। वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है। आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप रेडियो चैनल 90.4 FM। मैं हूं जॉक्सू, मेरी जान धड़का।

0: आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चिरार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, इट हर्ट्स when you realize that you aren't as important to someone as they are to you. What is frequency? Har dil ki dhadkan se hooked.

0: 원하여.
1: 저스. 스토리 리전 91.4 FM, the hottest frequency. Enjoy kar rahe hain Mazdar Show. What's up? What's up show ka ban ke hissa. Sunaiye hame apni zindagi ka khas kissa. Pahunchaiye apni baat sab tak. Wahan wahan, jahan jahan jaati hai Radio Chinar ki hottest frequency. 8899904904 ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. अब हमसे जुड़े, डीएम कर सकते हैं आप. जी हम डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, जॉक्स्यूस के नाम से मिलूंगा, JOCKXEUS जॉक्स्यूस. आप मैसेज करके डीएम्स में शो में शामिल हो सकते हैं. सना इरफान हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं. सना इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमारी प्यारी सी बहन का इस्तकबाल है हमारे व्हाट्सएप शो में और लिखती हैं आगे, सना भाई आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, शुक्रिया. रेडियो चुनार अच्छा लगता है, डबल शुक्रिया. सब आरजेज मेरे फेवरेट है, शुक्रिया पे शुक्रिया पे शुक्रिया, मतलब सैंडविच वाला शुक्रिया. थैंक यू सो मच बेटा हमसे जुड़ने के लिए. गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हुक्ड टू हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी. जैसा कि मैंने कहा, अभी अपनी बात हम तक पहुंचाए, अपने दिल की वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी जानी. 8899904904. अब आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो अक्सर आजकल लोग महसूस करते हैं. नहीं, प्यार नहीं, पैनिक अटैक. मैं कोई पैनिक अटैक में बस मैं किस पैनिक अटैक है एमसस को पैनिक अटैक कशरन गस का टर्म लागिन जायत पच करा टर्म पर नो व्हाट इज पैनिक. पैनिक अटैक में क्या होता है, देखिए आप बैठ जाते हैं, सांसें चढ़ने लगती है और इंसान जो है थरथरा बौखला सब कुछ हो जाता है.

0: यानी पैनिक अटैक्स के टाइम क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, कितनी क्षमता इंसान के दिमाग की होनी चाहिए ताकि वो इन पैनिक अटैक्स को डिशुम डिशुम करके अपनी जिंदगी से दूर रख पाए। रेडियो चुनाव 90.4 FM, आज हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक्स। तो पैनिक मत होइए, बस अटैक कर दीजिए मोहब्बत वाला
1: मेरी।
0: जी हाँ, दिल हो जावे बाला बाला जब आपका मैसेज आला, व्हाट्सएप आला या कॉल आला, तो लाला फोन उठाओ 8899904 बटन दबाओ। मैं हूँ जॉक्स, हर इस फ्रीक्वेंसी मजदार शो व्हाट्सएप रेडियो चुनाव, हर दिल की धड़कन से डायरेक्ट धड़काते रहो।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट देख।

0: कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आरजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: Atât mă știe. Alright, super duper excited ki bahut sari baatein karni hai ab do log subah subah samne has rahe hain to kaisa hi maza hai aur us pe ye bhi ki dekhi chehra udaas rakhte hai na to insaan ki wo energy bhi transfer ho jati hai to bilkul aisa na kijiye aur jinka chehra udaas unko udari bole abhi theek karne ka dekhi hamara mood pe bhi is pe kaafi asar padta hai to filhal ke liye mujhe aisa lagta hai ki meri jo puri vibe tribe hai unse jo एनर्जी आती है ना वो हमेशा ना एकदम डॉज हुए बड़ो सर इस एनर्जी को और भी बढ़ाने के लिए वाइब को बढ़ाने के लिए आपका साथ ही काफ़ी है तो साथ दीजिए और बताइए क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द और किस चीज़ से आप थोड़ा उदास है और किस चीज़ से आप बहुत ज्यादा खुश
1: को सताए तेरी अखियों का नू बात ये सच्ची आज तुझको बताऊं मुझे समझ नहीं आता कैसे
0: देखिए मुझे तो समझ आ चुका है दूरियां कैसे मिटाते हैं देखिए बैक टू बैक सॉन्ग चलाते हैं आपसे बातें करते हैं और बस 12 से 2 चलते जाओ
2: निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए गिर जाए
3: क्योंकि आवे मेनू इतना दूर ले जा तू
0: चलिए दूर ले जाने के लिए तो मैं आ चुकी हूँ और बैक टू बैक सॉन्ग से आप ही बताएं कहाँ तक चलेंगे साथ निभाएंगे और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 99.4 FM ये है दिल की धड़कन तो मेरे दोस्त सरोज लड़का

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: आप सबका स्वागत है, हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar, beats up, enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. And we are talking about National Hype of Jammu Kashmir. Bahut saari cheezein traffic ko kiya ja raha hai, aaram se aa sakte hai, ja sakte hai. Aur abhi ke liye main aapko bata dun, weather conditions agar change hui to baaki ke jo updates hai wo hum aap tak pahunchaye, but still aap guidelines ko follow kijiye, uske baad hi aap koi decision le sakte hain. क्यों बेटर रहता है, आपका सफ़र काफ़ी ईजी होता है. और ईजी ऐसे लगता है ना कि जैसे हमें पता हो, हम प्रिपेयर होते और तुम्हें कोई हर्डल नहीं आता है, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. सो हम भी यही चाहते हैं, वी केयर फॉर यू, वी मीन इट. हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपने सफ़र को एंजॉय करें, कोई भी परेशानी ना हो. एंड फिलहाल के लिए मुझे पता है सफ़र में क्या चल रहा है. एकदम से ही मौसम ने हालात, जज्बात, ख्याल सब कुछ बदल दिए. तो अभी क्या है आपके मन में ख्याल और स्पेशली वेदर का, या फिर आपने अभी आगे क्या सोचा है 2026? हमें

बिगल स्टार्ट हुआ, अभी खत्म होने ही वाला है और पता ही नहीं चला। कल ही तो ईयर स्टार्ट हुआ था एंड अभी के लिए हमें लगता है कि बस दो ही मंथ्स अभी बचे 2026 के। तो फिलहाल लिए मुझे बताइए कि कितना मज़ा आ रहा है और फिलहाल ट्रैफिक का क्या हाल है और क्या है वो मैसेज आपको लगता है आपने जब ने ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो किया, आपने ओवरटेक नहीं किया और फिर भी कुछ लोग जो है वो जानबूझ की चीज़ों को फॉलो करते हैं ताकि आगे वाला इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो, कोई परेशानी हो जाए, और उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही हूँ, आप भी पहुँचाए अपनी बात उस तक, मैं पहुँचाऊँगी वहाँ वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो सुनार की आवाज। देखिए मिट्टे मिट्टे गाने तो मेरा काम है सुनाना और उसमें ये भी है कि गानों के साथ आपकी बातें भी मैं सुनती हूँ, मीठी मीठी बातें। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आप सुन रहे हैं हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM।

पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा

0: करने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Senorita Maria, which way? Maria Katya Ananbu, but by my bunny, I'm so show hangama, the drama chunkarun.
1: We go, Maria, Maria, Tiquero, Tiquero, Maria, Maria,
2: Tarika.
0: थड़के गया और अब देखिए बहुत कुछ होगा क्योंकि शो हंगामा शुरू हो चुका है जहाँ बहुत सारा ड्रामा एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन और लाइफ में क्या चल रहा है और देखिए बाकियों की लाइफ में क्या चल रहा है अपनी तो हम बात नहीं करते, हम तो मोहल्ले की वो आंटी है कि हर जगह झांक के देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या बजिंग है और उसके अलावा लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। और हमारी एक परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है कि आते आते प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी ताकि हम इस आफ्टरनून की जो नींद है उससे भागकर हम अपने लिए और थोड़ा और टाइम निकाल पाए। धुरंधर द रिवेंज एक बात बताना जरूरी है, धुरंधर द रिवेंज के जो गाने हैं, धुरंधर 2 के जो गाने हैं, ओह माय गॉड, एवरी सॉन्ग इज अ फुल पैकेज। एंजॉय कीजिए, मैं और तू और आपका और मेरा साथ तो बना रहेगा बराबर 4 तक, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
3: जी हाँ, हंगामा है, ड्रामा है, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रेंडिंग, क्या है लोग क्या देखना सुनना, रीपोस्ट स्टोरीज, डांस रील्स, लिप सिंकिंग, क्या क्या हो रहा है इंटरनेट पे, चाहे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एक्स है या है फेसबुक। और आज की बात करें तो हमारी चहेती एकदम जो अभी भी रॉक स्टार वाली वाइब देते हैं, सिर्फ काजी तौकीर वाला रॉक स्टार वाली वाइब नहीं, बल्कि एक्चुअल रियल रॉकस्टार वाली वाइब देती है। मैं बात कर रही हूँ सुनिधि चौहान की, जिनके कॉन्सर्ट्स अभी हो रहे हैं हर जगह, एंड ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ द फैंस, सो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है द वे शी परफॉर्म्स। और अभी एक रील जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बिकॉज शी इज़ परफॉर्मिंग विद अ बीट बॉक्सर आर्टिस्ट, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, एंड पीपल जस्ट वॉन्ट टू बी देयर, पीपल जस्ट वॉन्ट हर टू परफॉर्म। ज्यादा तो वो है जो सुनिधि ने हम पे किया है, क्या बोले, मतलब एकदम आइकॉनिक है। जब हम सब बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे लिए जैसे लाइक लता मंगेशकर जी हैं अभी, शी इज द आइकॉनिक, श्रेया घोषाल एंड सुनिधि चौहान हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल इन म्यूजिक। और रही बात सुनिधि चौहान की स्पेसिफिकली, शी कैन सिंग एनी काइंड ऑफ ट्रैक, बहुत वर्सेटाइल लाइक आर्टिस्ट हैं। और अभी की बात करें तो अभी जो उन्होंने जादू डाला है बस एकदम क्रेजी है। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और बैक टू बैक ट्रैक्स, क्योंकि रेडियो सुनार देता है आज फ्री म्यूजिक का वादा, जी हाँ सबसे ज्यादा।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और जैसा कि आज हम वेमेन एंड फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें, कि अभी पहले जब कश्मीर की स्पेशली बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स थे कि एक लड़की टीवी पर कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, कुछ नहीं कर सकती ये सब। बट अभी के जो नैरेटिव्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कश्मीर को। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए स्पेशली वेमेन इन फिल्म्स या मूवीज, एंटरटेनमेंट या जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं उनमें काम करना खुद भी चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ डाउट के साथ रहती हैं कि शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट व्हेन यू लीव दैट बाउंड्री, व्हेन यू लीव दैट स्टीरियोटाइप जो आपने खुद अपने दिमाग में बनाया हुआ है, तब आप एक अलग लेवल पर होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप अपने खुद जो डिसीजंस है वो ले पाते हैं, आपको एक खुद मुख्तारी मिलती है, आप एक सेल्फ सफिशिएंट तरीके से अपनी हॉबीज़, अपना करियर, अपना जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में, वो फील्ड परस्यू कर सकते हैं। और हर बार जब भी किसी जो लड़की से बात होती है, स्पेशली मतलब कश्मीर की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है

अपनी जिंदगी की तरफ, वो बहुत डिफरेंट होता है. दे आर नॉट लूजर्स. वो अपने लाइफ में अगर गिरते भी हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं, चाहे ऑडिशंस हो लाइफ में, हो फैमिली प्रेशर हो, सोसाइटल प्रेशर हो, बट कहीं ना कहीं दे जस्ट कीप देमसेल्व्स गोइंग. एंड कहीं ना कहीं उसी वजह से, उसी फैक्टर की वजह से आज वो वहां पहुंचे हैं जहां पे वो पूरी दुनिया को अपने उस डायरेक्शन पे एक रास्ता दिखा सकते हैं बाकी लोगों को, ताकि वो भी इस एंटरटेनमेंट फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम रोशन करे. फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए पीकाबू. द ट्रैक का नाम है पीकाबू. दिस इज फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

कहानियां झोला लेकर चले जाएंगे और आज चार बज चुके हैं, चार का बार और आपका समाचार यहीं खत्म होता है क्योंकि शो हंगामा यहीं तक था और कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेनमेंट। कल है थोड़ा सा स्पेशल है बॉस, स्पेशल है क्योंकि कल इज वेंसडे एंड देयर इज अ रेडियो गर्ल स्पेशल फॉर यू। अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो RJ ASRAA के नाम से मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगी, चाहे फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, और आप जो कुछ कहना चाहते हैं यू कैन शेयर इट। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। और जाते जाते बस यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए क्योंकि जरूरी है कि यू विल हैव मेमोरीज टू शेयर एंड टू चेरिश। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। RJ Zoo

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पेशकश लहरों तक।
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: तभी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: है सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4 FM।

Monica!

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

और जख्म ले जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

जान तो लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है जट यमला पगला दीवाना हो रप्पा इतनी सी बात न जाना के

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: खुशी
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सूरज, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ अमुरे ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ धरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मच धूम जो समझा उसी की मच धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना। ये

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।